सागर पूरन परमेश्वर हर नाचे त्यो मन माही। अमृत कौड़ा बिखिया बीठी साकत की बिद नैनो डीठी। कूड़ कपट अहंकार रिझाना नाम सुनत जन बिछू डसाना। ओ माया कारण सदही झूरे मन मुख कवै न उस्तत करे। निर्भव निरंकार दातार तिस स्यों

राग गौड़ी दखनी विच ऋषभ धैवत कोमल अते बाकी सुर शुद्ध लगते हैं। इस दे आरोह विच गंधार धैवत सुर वर्जित हैं। इस दी जाति औडव संपूर्ण, वादी ऋषभ, संवादी पंचम अते समा सवेर दा पहला पैर है। इस राग विच नाम मिले चले मैं नाल शब्द दा गायन कर रहे हैं प्रिंसिपल शमशेर सिंह करीर।

0: मेरा धर्म जित भेटे साधु के चरण।
1: भगवान राम
2: पेरनी दी चुगी विच पहुंचे भगवान जिना रहा तू आयो ना रहा तू मैं सदके जहां कुछ आदास छाया पीलनी ने त्रेता युग दे मालिक भगवान रामचंद्र जी बैठ गए। महाराज मैं गरीबनी ते बख्शिश कीती है ना, नहीं पीरनी तेरे प्यार तेरी जे पीरनी भुख लगी है आखो श्रीवाद पीरनी डाडी भुख लगी कुछ खिला रब नू बड़ी भुख लगी। बाबा जी कलेरां वाले बाबा जी बाबा नंद सिंह जी महाराज प्राप्ति वाले महापुरुष नाम जप के नाम दी प्राप्ति नाम जपना होर चीज है नाम दी प्राप्ति हो जेड़े परमार्थ दे राह ते तुरे नु भाई उन्हां दे भी चरण चुमी है तुरे तां जेड़ा तुरया है ओही पहुंचण दी आस रख सकदा है। कदे ना कदे सी ते जेड़ा परमार्थ दे राह ते तुरया ही नहीं है वो पहुंच किवें सकदा गल्ली बाती तो पहुंचया नहीं जांदा। भाई गुरदास जी ने लिखे है पूछ तो है पधक से मार्ग ना धरे पग प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए। गल्ला नाल आजकल दी दुनिया गल्ला नाल ज्ञान चाहुंदी है और भाई महापुरुषां दा कथन है गल्ला नाल ज्ञान नहीं मिलदा। ज्ञान ना गली ढूंढिए कथना करड़ा सार ए तो बड़ी करड़ी मंसल है औखी काटी पर जेड़े तुर पैंदे हन ते करदे हन साई दे मिलन दे कर्म चंगे फिर उन्हां नूं प्राप्ति हो जांदी है। ज्ञान न गली ढूंढिए कथना करड़ा सार कर्म मिले तां पाइए होर हिकमत हुकम हुआर। कर्म कर महापुरशां दी संगत करके सानू भाई चंगे कर्मां दी प्राप्ति हो जांदी है। कई कहंदे जी संतां दी महापुरशां दी संगत कीतियां की मिलदा है ते बाबा जी कहंदे सन केड़ी वस्तु नहीं मिलदी आखो श्री वाहिगुरु। महापुरुषां दी संगत करके केड़ी वस्तु नहीं मिलदी चार पदार्थ जे को मांगे फिर हजूर कहंदे सात जना की सेवा लगी धर्म अर्थ काम मोक्ष। फरीद नूं भी पता लगा सी कि कोई माता है वह दस लेंदी है अज रब तुठा है अज रब रुस गया है चलो मना उस माता कोल चलिए मैं रब नूं मनाउण वास्ते रब नूं रिझाउण वास्ते कई कर्म कीते हन पर अजे ज़ियारत नहीं होई कि ओ सिंगार मिलन के ताहीं।

तन हथ राखी पूंजी। गुरमत दी पूंजी की है गुरबाणी, गुरबाणी गुरु है, गुरु ही बाणी है। जिस दी हजूरी चा बैठे हो, जिस बाणी दा अमृत पी रहे हो, जिस बाणी नाल जुड़ के भाई बाणी वाले दे दर्शन होंदे हैं, एक बारी मत्था टेको श्री ग्रंथ साहब दे के गुरु अनहद बाणी पूंजी, साडी पूंजी बाणी है, साडा जीवन ही बाणी है। सिख जरा बाणी तू विछड़ गया और गुरु तू विछड़ गया, जरा गुरु तू विछड़ गया भाई परमेसर ते पुलिया व्यापन सबे रोग वे मखोए राम ते फिर लगन जन्म जन्मा दे योग पे जन्म। तो कवि जी कहन लगे इस वास्ते महापुरुषां दी सेवा करनी है क्योंकि नाम दे सदके नामी मिलेगा ते जेड़े महापुरुष ना कवि सेवा को दो भले। एक संत राम राम जो दाता मुक्त का पर मुक्ति नहीं देंदा ता देंदा है जो उसका नाम जपिए ते नाम कौन जपाणगे राम जो दाता मुक्त का संत जपावे नाम। बाबा जी वचन करदे सन रब बेशक रुस जावे परवाह ना कर, रब बेशक रुस जावे ता रुस जावे पर रब दे प्यारे ना रुस। ये रब दे प्यारे नाल बनाई है ता रब ही रीज पवेगा। फरीद ए तीजा फल है, दर्शन कीते मन ठरिया, बचन सुने मन दी मैल उतरी, ते हथी सेवा कीती ओ शरीर भी सफल हो गया। ते मां रब रुस भी जांदा है हां पुत्र रुस जांदा है किस तरह। तो इस माई ने कहा जिस दिन किसे जीवन वाले दे दर्शन हो जान उस दिन समझी अज रब टुटा है, ते जिस दिन किसे सागत पुरुष दे दर्शन हो जान समझ लो अज रब रुस गया है। आखो श्री वाहेगुरु। सागत पुरुष वो कौन है जो रब तो टुटा हुआ? निगुरा पुरुष, निगुरा पुरुष जिथे बह जाता धरती सड़ जाती धरती, ओ साकत पुरुष आप सच नाल नहीं जुड़ता, जेड़े जुड़ते उन्होंने निंदा करता है। ओ साकत है जेड़ा गुरु नू छड़ के आप कुछ बन बैंदा है। ओ साकत आप क्यों बनी? मैनू याद आया है जिला लाहौर पत्तों की तहसील जंगल विच बाबा जी ने बख्शिश दी थी, चलार पिंड सी नाल माझे दिया संगतां ने बेनती की थी बाबा जी इथे भी गुरु नानक दे नाम दा चट्टा दे सत बचन कीर्तन शुरू होया। बड़िया संगत दूरों दूर जंगल विच मंगल लग जांदे सन जिथे जांदे सन बाबा। पूर्णमाशी आ गई, पूर्णमाशी दा खास समागम होंदा, संगत बेनत आई, संगियां ने कहा बाबा जी सारियां दा विचार है कि आप उच्ची थां ते बैठो। आखो श्री वाहिगुरु। उच्ची थां तको प्यारी सात संगत ए प्राप्ति दे साधन, प्राप्ति दा नमूना। आप उच्ची थां ते बैठो ता जो सारी संगत नूं दर्शन हो जाए। ते बाबा जी धरती पुट के नीवे बैंदे, धरती नूं पुट लेना नीवा बैठना, ते कहना भाई नीवे बैठांगे गुरु नानक दियां संगतां आउणगियां, कोई बख्शी रूह आ जाएगी ओदे चरणां दी धूड़ी पवन देवता उड़ा के साडे उते सिर देवेगा, साडा भी उधार हो जाएगा। इतनी निवरता आप एक निको इतनी निवर संगतां ने जे सिरे बेनती की थी। बाबा जी कहन लगे हो गुरसिखो की क्या जे उच्चे बैठी है? हां बाबा जी साडी इच्छा है। बाबा जी कहन लगे गुरु ग्रंथ साहब दे सामने उच्चे की बन के बैठे। आखो श्री सतगुरु दी हाजरी विच उच्चे की बन के बई, असी तां गुरु नानक दे गोले हैं झाड़ू बरदार, असी गुरु नानक दे कुत्ते, उच्चे किस तरह बैठे? ए नहीं हो सकता। तो प्यारी सात संगत आखिरकार संगत दी भी बेनती सी, बाबा जी कहन लगे फिर बाहर प्रकाश करो श्री गुरु साहब दा तखत पोश दे उत्ते। कहन लगे सतगुरां दी हजूरी च बह जावांगे। आखो श्री वाहिगुरु। बह जावा ए तो हो सकता है, गुरु ग्रंथ साहब दे सामने उच्चे किवें बह जाइए, मालिक दे सामने नौकर किवें बह जाए? कितनी गुरु प्यारे भाई करतार सिंह जी मैनु बचन सुनाया है महापुरुषां दा, पूर्णमासी का समा बाबा जी की बरसी मनाई गई महापुरुष।

0: मार पे नाकाम भी।
1: सारे ही देश को देख रहे हो मत, अब उपदेश है
0: आप ना करें
1: आप।

गुरु पानी पिता माता धरत महत दिवस रात दुर्दाई दाया खेल सगल जगत चंगियाँ बुरियाँ वाचे।

सतगुर की बाणी सत स्वरूप है, गुरबाणी बणी है। सतगुर की रीसे होर कच्चू बिच्चू बोल दे से कूड़िया।

राग बड़ा ही मधुर, आकर्षक अते प्रभावशाली राग है। भारतीय संगीत विच इसकी गणना अल्प प्रचलित रागां विच कीती जांदी है। पुरातन कीर्तनकार इस राग नूं बिलावल दे अंग नाल गांदे सन, जिस करके होर भी मधुर बन जांदा है। इस राग विच बाणी गाउण वाले दी आत्मा पूर्ण उत्साह विच रहेगी। केवल एक दी आस रखनी, इस चेतावनी नूं बार बार मन चितवदा है, क्योंकि यह आस परमित्री भाव दूजा है। खिनमै झूठ बिनस सब जाई। इस राग विच सारे स्वर शुद्ध लगते हैं। श्री हरिमंदर साहब जी की मर्यादा अनुसार यह दिन के दूजे पहर गाया जाता है। पहला शब्द मत को परम भूलै संसार, राग गाउण विच गा रहे हैं डॉक्टर जगीर सिंह जी। दूजे शब्द का कीर्तन कर रहे हैं भाई अमरजीत सिंह जी तान। शब्द की पहली तुक मेरे मन प्रेम लगो हर तीर, श्रवण करो पहला शब्द मत को परम भूलै

0: मुकुंड पर्वत है जहां
1: है
0: पारी करी तपस्या, हे मुकुंड पर्वत है जहां।

अनंगरूपं नज्जुलभं स्वर्गराजन नज्जुलभं भोजनं बिर्जनं नज्जुलभं स्वच्छ अंबर नज्जुलभं सुत मित्र परात माधवे नज्जुलभं बंता दिलासा नज्जुलभं।

वाहिगुरु ना कहिए तो घाटा पै जाएगा, वाहिगुरु कह नाल तो सुरत वाहिगुरु नाल जुड़ जाएगी। आज पढ़िए ना सारे।

गर्व न कीजे नानका मत सिर आली करोड़िया तो केड़ी चीज का माण कर जवानी रे जवानी सदा नहीं रही आउंदी है चली है ये झूठा हकूमत का माण कर दे इस संसार च बड़े बड़े राजे महाराजे आए जिन्हों का नामो निशान नहीं है माया का माण करना यह भी झूठा माया ये तो चलता पानी ए माण भी निरंकार ने तेन मनुष्य जन्म दिता चंगे कम करने हौमे हंकार फिर रहे हैं याद रख एक दिन पछताए साहबा का पवित्र पावन उपदेश विश्व ने करोड़िए ने पत्थर वर्गा मन पानी काठी सिर तो रख दिती दूजी छिन विच मेरे धन गुरु नानक पातशाह के चरणा से रोज लग पातशाह मेरे बख्श लो मैं पापी मेरे कोलों कुल हो गए अपने चेहरे के दाग जेड़े दिखते जे शीशे कोल जाइए शीशे कोल ना जाइए तो पता ही नहीं लगता इसे तरह अपने कीते कर्म जेड़े हैं उन्हों का पता ता लगता है जे किसी महापुरुष के दर्शन हो जाए महापुरुषों का जीवन साफ शीशा हो अज धन गुरु नानक पातशाह जी निरंकारी जोत बाबे के दर्शन करके करोड़िया रोज घुबा मार के रोई जाता कहता है पातशाह मेरे बख्श अरदास कर आओ आप भी करिए किस तरह करोड़िया नाले रोंदा है ते नाले पहला सेवक बोलेगा पिछे सारी समझ

करोड़ी आते करोड़ों के मेरे तन गुरु नानक पातशाह ने चरणानुष्ठ हो पातशाह बस अदूर कह लगे मरदाने बख्शीए। मरदाने ने कहा महाराज अगे मेनु पुछ के बख्श दो ये तो तुहाडा बिरदा जो शरण आवे तो संत लावे ए बिरद सोनी संदा। तो हजूर ने अभय दृष्टि नाल तकिया ते किया करोड़िए फिर जप सतनाम संसार रोगी नाम करोड़िए नाम जपे नाम जपेगा तेरा मन पवित्र दाड़ी बाणी पड़ेगा नाले सत्संग भी करिया करते करोड़िए तेनू निरंकार ने माया दिती है दान पुण्य जो माया भी कर सत्य हूं करोड़िया से गल च पला पा के कहता पातशाह एक बेनती मेरी करवा केड़ी पातशाह नाल ही मेरा पिंड हूं मेरे घर चल मैं तुहाडी सेवा तुहानू प्रसाद छकावा दुध पिलावा। अदूर कह लगे क्यों मरदाने चलीए मरदाने ने कहा महाराज भी कोई पुछण वाली गल चलो हूं तुहाडा सिख बन गया कौड़िया। अदूर कह लगे मरदाने अजे सिख नहीं बने पातशाह किस तरह। अदूर कह लगे मरदाने अजे नु सिखी दिती सिखी की है हुकुम ते जे हुकुम मनेगा तो फिर ही साडा सिख सिखी गल्लां विच नहीं गल्लां दी सिखी कमजोर सिखी का स्वरूप की है उस वाहिगुरु का हुकुम हुकुम मनिए होवे परवान ता खसमे का महल करोड़िए जो तेनू असी उपदेश दिता है ओनू कमा जे तू कमाएगा फिर अरदास करिए असी आवांगे तेरे घर प्रसाद भी छकांगे ते आके वाहिगुरु दे नाम दा पवित्र जो अमृत है ओदा प्रवाह करोड़िए चरना ते कहते पातशाह मैं गरीब तेरी बख्शिश कर दिती है। हजूर कहन लगे करोड़िया बख्शिश मेरे वाहिगुरु दी जिस वेले बख्शिश दा समा आउंदा है फिर जिना संभाल लेता है वह पाइए तो बख्शिश होगी तो भी गुरु की बख्शिश हो बख्शिश वाला समाज बख्शिश तो सदी ही है। बाबा आनंद सिंह जी महाराज वचन करते सन उस वाहेगुरु की सदा ही मेहर है पर उस मेहर को संभाल लेना यह वड्डी आप जिन्हों के भागा बच्चे बख्श दो वेले आके आप कीर्त नहीं जुड़े जिन्हों से गुरु जी कई आने ही नहीं कई नावे पाई जाते पर कई ऐसे प्रेमी भी हैं जिन्होंने किसी कीर्त च नागा नहीं पाया जो कीर्तन च नागा नहीं पाएगा तो गुरु नानक की बख्शिश ही नागा नहीं पाएगा। कौड़िया ये मालिक की दात ये जोर की चीज नहीं न्यूयॉर्क तू टेलीफोन आया है कदों वापस आ रहे हो छेती आ जाओ किसे पासे उड़ीक है कि कई गुरु प्यारे तुहाडे वर्गे माई भाई कीर्तन का अमृत पी तो यह दात गुरु की अपनी है। हजूर कह लगी मरदानिया रवाज चुकी ते शब्द की अखीली पचपन मरदानिया ने रवाज चुकया ते बाबे ने सोने गले सब्जता की किया और सारे पढ़िए कीर्तन की समाप्ति करिए।

0: तेरी इच्छा सही। जो गुरु का उपदेश साहबा ने करोड़िए से बख्श और असी भी इस उपदेश को हृदय च बसाइए कमाई करिए जो साडा भी जीवन सफल फिर सानू सदा वास्ते की मिलेगा। साडा ये लोग सुखी है पर लोग सुखे ने हर पल आते मिले और पहली सात संगत जिथे होस्टल दिया संगत ये गुरुद्वारा साहब के प्रबंधकों के उद्यम नाल दास रोज आप जी के दर्शन करता है ते आप शब्द द्वारा गुरु नाल जुड़े तो अज गुरु दरबार साहिब अमरीकन सिंह ये गुरु प्यारा जत्था ये भी इतने ये भी साढ़े वीर अनुभाई गुरु नानक पिता है एक पिता एक उसके पारक तू मेरा गुरु जो गुरु नानक का सिख गुरु की मर्यादा विच रहेगा भाई उहदे च कोई विथ नहीं है सारे बापू के बच्चे हैं तो गुरु प्यारे भी आए हैं तो शब्द एक शब्द की हाजरी वो लगवाण गए उस तो उपरंत कीर्तन की समाप्ति अमृत वेले का प्रोग्राम भी है कल शाम जिस तरह रूटीन कह दी है उसी तरह कीर्तन धन गुरु नानक पातशाह आप जी भी महान महान बख्शिश द्वारा बरखुरदार गुरमुख प्यारे गुरसिख आप जी ने बख्शे खजाने विचों कीर्तन की भेद शब्द का आदर करते डालर अरदास कराते मेरे अंतर जामे गुरु नानक जी आप अपने गुरसिखा बच्चिया सुखी जीवन सदाचार दिया कला बख्शो आओ फतेह बुलाओ प्यारा
1: वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु।

बिन बाजे कैसो नृतकारी, बिन कंठे कैसे गावन हारी। जील बिना कैसे बजे रबाब, नाम बिना बिरथे सब काज। नाम बिना कहो को तरिया, बिन सदगुर कैसे पार परिया। बिन जेवा कहा को बकता, बिन श्रवना कहा को सुनता। बिन नेत्रा कहा को देखे, नाम बिना नरक कहीं न लेखे। बिन विद्या कहा को पंडित, बिन अमरे कैसे राज मंडित। बिन बूझे कहा मन ठहराना, नाम बिना सब जग बौराना। बिन बैराग कहाँ बैरागी, बिन हो त्याग कहाँ को त्यागी। बिन बस पंच कहाँ

गोविंद ना भजै अहं बुध माता जन्म जुए ज्यों हारे। नाम अमोला प्रीत नत स्यों पर निंदा हितकारे। छापर बांध सवारे तृण को द्वारे पावक जारे। कालर पोट उठावे मुंडे अमृत मन से डारे। मोढ़े वस्त्र का

जिन सतगुर पुरख मनाया तिन पूजे सब कोई, जिन सतगुर प्यारा सेविया तिन सुख सद होई, जिना नानक सतगुर भेटिया तिना मिलिया हर सोई।

जिनका कीता माटी ते रतन, गर्भ मैं राख्या जिन कर जतन, जिन दीनी शोभा वड्याई, तिस प्रभ को आठ पहर ध्याई। रमैया रेन साध जन पावो, गुरमिल अपना खसम ध्यावो, जिन कीता मूढ़ ते बक्ता, जिन कीता बेसुरत ते सुरता, जिस प्रसाद नवै निध पाई, सो प्रभ मन ते बिसरत नाई।

करुणालय है अर्थालय है खल खंडन है मह मंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है। हे प्राणनाथ गोविंद कृपा निधान जगत गुरु हे संसार पाप हरणी

ऐसा हर सेविए नित ध्याइए। साहिब गुरु रामदास साहिब जी फरमान कर दे, ऐसा हर सेविए नित ध्याइए, जो खिन में किल बिक सब करे विनाशा, जे हर त्याग अवर की आस कीजे, ता हर ने फल सब घाल गवास। मेरे मन हर ऊपर कीजे भरवासा, जे जाइए ते नाल मेरा स्वामी, हर अपनी पैज रखे जनदासा। जे अपनी बिरथा कहो अवरा पे, ता आगे अपनी बिरथा बहुत कढ़ासा। अपनी बिरथा कहो और अपने स्वामी पे, जो तुम्हारे दुख तत्काल कटासा। सो ऐसा प्रभ छोड़ अपनी बिरथा अवरा पे कहिए,

0: सिकंदर
1: को हर समान नहीं राजा ए तू पद सब दिवस चार के झूठे करत दिवाजा तेरो जन होए सो एकत डोले तीन भवन पर छा जा हाथ

परमेश्वर पुज ते सब नरक कुंड में पर है। मोको दास तबन का जानो वाह वाह गोविंद सिंह।